इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

गुरु की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहे हैं प्रभु जस मान रहे हैं और ये धर्म दा मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण कीता आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलदे ने धर्म पंथ तरयो धरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलदे ने रहे लिव तार ना तावत है भटकना मुक जांदी है लिव जुड़ जांदी है जीवन दा आनंद लैंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेड़े गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने उन्हां नूं नरक दा डर नहीं जम दा डर नहीं ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणा दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लेंदे ने रंग च रते होए

जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाए विश्राम जित कर हर कंत ना प्रगटी पठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम हर मेलो स्वामी।

हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो। पुत्र कलत्र ना संगतना हर अविनाशी ओहो, पलच पलच सगली मोई झूठे तंदे मोहो। इकस हर के नाम बिन अगे लिए खोए, दया विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न कोई।

आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास। आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास। जग जीवन पुर

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया।

लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैसन प्रेत। पकड़ चलाइन दूत जम किसे ना देनी पेत।

प्रभु आपना नानक तिस कुर्बान माग सुचे से कांडिये जिन पूरा गुर मेरवान। फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए, फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए, सेज सुहा

रखियो ग्रे पीतरो उठ उहाँ को दौड़ो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सोग हरख नहीं जाने हो।

कोठड़ी विच आ बालक जन्मे है, ओ सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई है। और जिवें हजार

मुस्कराया, हैरान रह गई दौलतां दाई, मेरे हथां विच अनेक बालक पैदा होए, लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है। दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई। सत सिखत बोलो श्री, वधाई दीती से बार आई कोठरी विचों, वधाई दीती मेहता जी वधायों,

0: नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगे?
0: खुंडकारा लकड़ी के उस टुकड़े में कहने ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जाता है।
1: पटरा क्यों
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोते ने मगर नामदेव जी दात के छीने सन ना कपड़े धोते धोते हो अपनी आत्मा हरी नाम धोते सन। इसलिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैनू तेरे नाम की उंगली टेक जिनी के पटरे नूं खुंदकारे।

परमेश्वर की भगती करते हैं, जो अकाल पुरख का सिमरन करते हैं, पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज आप कहते हैं, फिर वो परिपूर्ण परमात्मा सदा उन्हां जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह दा उचारण कीता होया, जिदे विच आप कहंदे हन, हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यान, हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावां, हर का नाम हृदय नित त्याई, सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपां, मन करके जपां, हर का नाम हृदय नित त्याई, संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपण दे सदके जिन्हां जिन्हां ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है, नाम जपया है और जपणगे, हे प्रभु कृपा करी उन्हां सारियां नूं ही अपने नाम दे सदके तार लें। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, फिर उन्हां दे अंग संग हुंदा है गुरु। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जो सिमरनगे परमेश्वर दा नाम, साई दा नाम, आख्या सदा गुरु उन्हां दे अंग संग है। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। पर जद नाम जपेगा प्राणी, नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों इक मिक हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करते सन, जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपण वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जाता, हर हर जन दो एक हैं। बिप विचार किछ नाही, जल ते उपज तरंग जियो, जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन ता उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के वो सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है, पाणी मंदा है ते की कहिंदा है, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया है, मैनू दुख विच रखिया है, ये तेरा ही हुक्म है, तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच यही आराधना करांगा कि तू मैनू अपना नाम बख्श, मैं तेरा सिमरन करां, अमृत वेले उठ के तेरी भगती करां। और जो परमात्मा दी भगती करते हैं गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

दरबार विच बैठे। साई मियां मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रवे, फिर भी उसके हुक्म विच रवे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझ बाणी ही उचारी है कि इसके उपर कोई अमल करन वाला भी है। ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, साई मियां मीर समा आवेगा, ये जो अखर असी लिखे हैं, जो अखर उचारे हैं, इन्हां ते अमल भी करके दसांगे। ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है, ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वार सब तों अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने क्या अच्छा, जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है। तां चंदू दीवान जिसनूं अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो, मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी, ए तुसी चंगा नहीं कीता। गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले ते ए गल संगत नूं पता लग गई, तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी, गरीब निवाज इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना, क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं। ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तां मेरी बड़ी बेदबी कीती है इन्हां ने, गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता, इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा। तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ। अंतरजामी गुरु अर्जन देव पातशाह तां सब कुछ जानते सन, जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तों कुछ प्यार वाले नाल तुर पए। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की, गरीब निवाज किथे तुरे हो? आख्या, बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नूं चले हैं, किसे जरूरी काम नूं चले हैं। तां बाबा बुढ़ा जी तां ब्रह्म ज्ञानी सन, जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नूं चले हैं साहिब जी, तां की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे हुए। पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां, तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा, बाबा जी ए राज राज ही रहन देना, खोलना नहीं। गरीब निवाज चले हो, एक वरा मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ, जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

कुछ दूरी तक साहब जी नाल गईयां, चारे पासे संगतां दी अखां विच आंसू हन। साहब जी कहन लगे, बस सात संगत तुसी हुण इत्थों वापस चले जाओ ते साडे नाल कुछ प्यार वाले अगे जाणगे। ते जिस वक्त गुरु अर्जन देव पातशाह लाहौर पहुंचे तां चंदू दीवान जो अहंकार दे मद विच सी कि मैं राजे दा दीवान हाँ, बादशाह जहांगीर दा दीवान हाँ, पहले तो गुरु अर्जन देव जी नूं किया कि ए रिश्ता आप गुरु हरगोबिंद जी दा मेरी लड़की नाल कर दिओ तां मैं सारे सुख तुहानूं देंगा। तां गुरु अर्जन देव पातशाह कहण लगे, चंदू मैं संगत दा हुक्म मोड़ नहीं सकदा, संगत दा हुक्म है, साध संगत दा हुक्म है, ए रिश्ता तेरी लड़की दे नाल गुरु हरगोबिंद जी दा नहीं हो सकदा। तू सुख दे दुख दे ए तेरे हाथ नहीं, ए तां अकाल पुरख दा भाणा है। तां चंदू पापी ने अपनी हवेली विच जिथे तत्ती लो अंदर लाई हुई है, अग बल रही है, तले ऊपर तवा लाल होया पे, आख्या फिर जे ए रिश्ता कबूल नहीं करना ता ए तत्ती लो ते बहना पवेगा। साहब जी कहन लगे, जे अकाल पुरख दा पाना इवी है ता तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ता गुरु अर्जन देव पातशाह आप अकाल पुरख वाहेगुरु नूं नमस्कार करके ते तत्ती लो ते चौकड़ा मार के बह गए। सात संगत बोलो श्री। ते फिर ऐसी अडोल बैठे, एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गए, ते चंदू पापी अजे भी मन एदा ठरिया नहीं। आख्या रेत तपाओ, रेत तपाई पड़पूंजे नूं सदिया, जो दाने पुंदा सी कि तू अपने कड़छे भर भर के गर्म रेत लैके अर्जन दे सिर विच पा। साध संगत बोलो श्री। तलों तत्ती तवी अग बल रही है, उत्तों गर्म रेत दे कड़छे पै रहे हैं, ते साहब जी दे जदों भी बुल फुरकदे हैं तां विच्चों एही आवाज आउंदी है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। साईं मियां मीर जदों पता लग्या साहब जी गुरु अर्जन देव लाहौर आए हैं, जदों दर्शन करन आया वेख के हैरान रह गए कि गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोह ते बैठे हैं, उत्ते गर्म रेते पै रहे हैं। ता हाथ जोड़ के बेनती कीती, गरीब निवाज एक ही पाना है। साहब जी कहन लगे, साईं मियां मीर तू पुछिया सी ना ऐसे प्यारे दे दर्शन कराओ के जो कहिंदा होवे तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। ता आवेख लै अग्न विच शरीर जल रहा है, तन तप रहा है, मन शांत है हरी नाम से, अंदर परमेश्वर दा नाम वसया है, अंदर सेक नहीं पहुंच रहा मन नूं, आ शरीर नूं क्या दुख देवेगा ए चंदू। साईं मियां मीर जिसने हरबंदर साहब दी नी रखी सी, जात दा मुसलमान सी, लेकिन गुरु अर्जन देव पातशाह दा प्यारा सी, ते गुरु अर्जन देव महाराज ने उस मुसलमान मियां मीर पासों अमृतसर दे विच जदों हरमंदर साहब साजिया तां नींव हरमंदर साहब दी मियां मीर पासों रखाई कि ए सांझी वालता दा घर है, गुरु नानक दा घर सांझी वालता दा है। मियां मीर ने बेनती कीती, गरीब निवाज जे आप कोई कला नहीं दिखांदे, शक्ति नहीं दिखांदे तां मैनूं हुक्म करो, मैं दिखावां। साहब जी कहन लगे, मियां मीर करना वड्डी गल नहीं है, जरना वड्डी गल है,
ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ

गुरु मेरे संग सदा है। ते फिर जिस वेले आख्या गुरु अर्जन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिदक वाले, उतने ही सिख सिदक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तां साहब जी कहन लगे चंदू साडा मन करदा असी इशनान करिए। तीन दिन हो गए हन चौकड़ा मार के बैठे हैं, साडे प्यार वाले जिहड़े नाल आए सन उन्हां नूं बुलाओ। ओ प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नूं प्यार नाल जिस वेले रावी दे किनारे ते लियाए, साहब जी कहन लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाउण दा समां आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे। जपजी साहब का जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच, ते तुसी वापस हरमंदर साहब अमृतसर चले जाना। ते ए सब नू आखना कि गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख के पाणी विच रह के उसके हुक्म विच अपना सिर निभाया। ते जपजी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी, ते जिस वेले जपजी साहब का भोग पाया, जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक दे मुख उजले केती छट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया। ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ रही।

ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰਕਾਰ ਪਾਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਹੂਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚੱਕਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕੱਪ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਮੈ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਦੁੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਐਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਭੰਵਰੇ ਜਿੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪਲਦਾ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਸੌ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ, ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਉਚੇਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖੁੱਡ ਘੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੂਨ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੀਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਦਾ, ਬੜਾ ਸੂਝ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਇੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵੜਿਆ।
मालिक निरंकार ने सब कुछ रचिया है ते सारे रचना दा शिखर जो है वो मनुख है। वाहेगुरु की सारी रचना दा क्लाइमैक्स मनुख है। सब तो वधिया रचना उहदी मनुख है। हुण मनुख भी बड़ा कुछ रच रहे हैं। सधारण डंडे तो शुरू होके यंत्रा तो शुरू होके अज इहदे कंप्यूटर इस नूं आप नूं हैरान करी जा रहे। बंदे ने बड़ा कुछ रचिया है लेकिन बंदा संतुष्ट कोई नहीं, क्योंकि इहने जो कुछ रचना है, जो इहदी रचना दा शिखर है वो ये है कि ए जिसने इहनूं रचिया उहनूं लभ ले, उहनूं जाण ले। जे उहनूं नहीं जाण सकदा ते अपने आप नूं जाण लवे कि मैं की हां ते काहदे लई। ये सवाल बड़े चिर दा चलिया है। जद जद किसे नूं ये जवाब आउड़िया है कि मेरी होंद काहदे लई है, एक नवे धर्म ने जन्म लिया। जद भी किसे नूं ये सवाल दा जवाब मिलिया है कि मनुखा जीवन काहदे लई है, एक नवे धर्म दा जन्म होया। उस धर्म के अनुसार ही लोग होए ने, क्योंकि वो धर्म के अनुसार ही होके लोगों अपना जीवन सकार था हुंदा जा पिया। समा पा के लोगों ने धर्मां नूं केवल कर्म कांड बना दिता। धर्म पेहे हुंदे चले गए, मुड़ के नवा धर्म लोड़ महसूस की जाती रही। धर्मां दा जन्म हुंदा रहा, मनुख दे अंदर सवाल उठदा रहा ते जवाब मुड़ मुड़ के ही सी। धन गुरु नानक दे सदीवी धर्म दे विच भी यही जवाब है, प्राणी तू आया लाह लैण, तेरी जिंदगी दा तू मकसद है। लख चौरासी जोन सवाई, मानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। जे इस जीवन विच कोई उचेची गल ना कीती, सिरजनहार नूं ना पछाणिया, ओदी सिरजना दी सिखर अपने आप नूं ना पछाणिया, ते फिर ओ भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहण वेहई है। जिंदगी तां लंघ जाएगी लेकिन ये चक्कर बनिया रह जाएगा आउण जाण दा। कबीर जी दी जीवनी विचों एक साखी मिलदी है, बड़ी प्रसिद्ध साखी। कबीर जी ने बाहर फिरदिया एक बैल वेखिया सी। बैल ओ जिस नूं बहुत वरतिया गया, वरत वरत के मार मार के उहदे कोल पूरा काम लैके जिसले ओह बोझ बन गया ते उहनूं घरों कढ दित्ता गया। किसे तेली ने काम लिया है या किसे जिमीदार ने काम लिया है, काम लैके जिसले बुढ़ा हो गया वह शरीर काम दा नहीं रह गया, उसनूं घरों कढ दित्ता। दिव दृष्टि वाले ब्रह्म ज्ञानी कबीर जी ने गौ नाल उसनु वेखिया, उस रुलदे होए नु वेखिया, तरस नाल भरे मन नाल गौ नाल वेखिया ते पछाणे। पछाण के कहंदे ने तू ओही ता नहीं जिन्नू कहंदे हुंदे सां भगता आ जाया कर किते सत्संग विच, ते तू किहा सी भगत जी आ जांगा जरा काका छोटा है अजे जरा सियाणा हो लवे ना, किते इधर उधर छाल मार के डिग के लतदा ना पढ़ा पवे, जरा इहदा ख्याल रखना जरूरी। इस तो भी पिछे अपनी जवानी वेले तू ए करदा रहा, कोई नहीं मैं व्याह करा लवां, मैं आया करांगा, बाल बच्चेदार हो गया बच्चों का ख्याल पै गया, जरा तू वड्डा हो गया बच्चा ते तू यही कहता रहा जी हुण जरा उहदी निगरानी का बहुत ख्याल रखना पैंदा है किते विगड़ ना जावे। जिसने जवान हो गया तुसा किया भगत जी हुण तां जरूर आया करांगे, जरा काके का व्याह कर दी, काका भी व्याहया गया ते फिर एक रीझा के बस कोई नहीं वह हुण नवा नवा व्याह है, वह अपने मौज मेले में आए थोड़े दिनों नूं अपना कम कार संभाल लवेगा, ते फिर मैं आना ही करना होर करना की, तुहाडे कोल ही आना होर कित्थे जाणे। वह भी समा भलिया लोका लंघ गया, फिर एक ऐसा समा भी आया मुड़ के तेनू क्या भगता हुण तां आ जाया कर, हुण तां मुंडा बाल बच्चेदार हो गया। कहिंदा जी की करा, मुंडा तां बाल बच्चेदार हो गया, उहदे बाल बच्चे हुण मैनूं नहीं छड्डदे, हुण उहदे बाल बच्चे नहीं छड्डदे, पहला अपने बाल बच्चे फिर मुंडे दे बाल बच्चे, कारोबार ए सारे झंझट जीवन लंघदा लंघ गया। अखीर एक दिन ए शरीर तो छुट्टी कर गया लेकिन उस घर नूं ना छड़ सकिया, उहदे च बिरती पैंदी रही। इस दे नाल मिलदियां जुलदियां कितनियां ही साखियां, कहिंदे ने इस घर नूं कदे कुत्ता बन के चंबड़िया, कदे उस नाली विच कीड़ा बन के फिरदा रहा, कदे उस घर दी रखवाली विच नाग बन के फिरदा रहा, कदे उस घर दा बोझ ढोण वास्ते खोता बन के फिरदा रहा, उस घर नूं नहीं छड़ सकिया, उस घर दा मोह नहीं छड़ सकिया, मर गया जूना च पैंदा रहा, जूना च भटकदा रहा। कबीर जी पछाणदे ने, कहिंदे ने तू ओही तां नहीं, तू ओही जापणा है जिस नूं कहिंदे सा भगती कर ले, भगती कर लैंदा ते मुड़ के तैनूं आ बैल दी जूनी ना पैणा पै। भगत जी उहदा नक्शा भी खिंचदे, उहदे जीवन का जो नजारा बने है वह भी दिखा रहे ने सानू। कहिंदे ने चार पांव जदों तेरे दो पैर सन, तू खड़ा सा इन्हां दो पैरां ते,
पैर दो सर खड़ा सर सीधा ते सीधा खड़ा होके तू बड़ा कुछ सोच सकता सर। इन्हां चारा पैरां ते खड़ा होके तू हुण कुछ नहीं सोच सकता। तेरी सोचन करन दी समर्था सीमित हो गई। उदो तू सोच सकता सर मगर तू ना सोचिया। पशुआ वाला जीवन ही बिताया। पेट भरे पशुआ जो सोयो मनुख जन्म है हारे। हुण तेरे चार पैर ने हुण तू की सोचेगा। बल्कि जीवन दे विच भी कई बार ऐसा होंदा है कि मनुख लैके ख्याल बैठा है कोई नहीं कर लेने इस मामले च ढिल वरता के बैठा है। भगती दे मामले च कई बार बंदा प्रोग्राम ही बनाउंदा रह जांदा और आम तौर ते पर जवानी विच लड़कपन विच बचपन विच बाल बच्चेदारी दे समय विच अधखड़ उम्र विच मनुख ऐसा सोचता रहिंदा बस हुण शुरू कर देना हुण बस कर ही देना है शुरू। थोड़े दिनां नूं ना भगती दा काम शुरू कर देना हुण नितनेम शुरू कर देना हुण गुरुद्वारे जाना शुरू कर देना और सच करके जानना जिहड़ा बंदा प्रोग्राम बनाउंदा रहिंदा ना कदे कुछ नहीं कर सकदा। करदा केवल ओह है जिहड़ा शुरू कर देता। जिसने शुरू नहीं किया केवल व्यौता बनाउंदा रहिया उहदा कदे कुछ नहीं बनदा। व्यौत करे ते नाल ही शुरू कर दे। जिसने शुरू नहीं किया ओह कदे सिरे नहीं लगदा। तुसां वेखिया कोई भी पैंडा करना हो एक कदम तुसीं चुकदे हो ते ओह पैंडा मुक जांदा। लेकिन जिस बंदे ने कदम नहीं ना चुकिया वह पहला कदम हालांकि जेड़ा मंजिल ते पहुंचने वाला कदम है वह बड़ा महत्वपूर्ण जापदा है। मंजिल ते पहुंच गए यह कदम अखीरला कदम बड़ा महत्वपूर्ण जापदा है। लेकिन नहीं जेड़ा पहला कदम है वह बड़ा महत्व है। जे पहला कदम ना चुकिया जाता तो आखिरी कदम भी कदे नसीब ना होंगे। वह पहला कदम यह है कि मनुख नूं बचपन तो बचपन च छोटे तो छोटी अवस्था दे विच बड़े सियाने सूझ वाले मां बाप ने जेड़े आप गुरु भगती च प्रभु भगती च लगे ने ते बच्चियां नूं प्रेर के गुरुद्वारे लै आउंदे ने नितनेम कराउंदे ने गुटका फड़ा के पाठ कराउंदे ने छोटे तो छोटी उम्र विच उन्हां नूं गुरु नाल जोड़न दा जतन करदे। लेकिन खिमा करना बच्चियां नूं गुरु नाल जोड़न दा जतन केवल ओह करेगा जिहदी अपनी जिंदगी विच अपने जीवन विच जिहदे एक रूटीन एक जुगत बनी होई है कि ओह पाठ करदा। जे बाप बच्चे नूं कहिंदा पाठ करिया कर ते आप नहीं करदा बच्चा कदे नहीं करेगा। बाप कहिंदा चल गुरुद्वारे चलिए जे तो आप तुर रहा है तो बच्चा भी नाल तुर पेगा। ते जे बाप लेटिया लेटिया कहे काका जा गुरुद्वारे होगा तो बच्चा उतो तक तुर पेगा राह जगह पिछा हो जाएगा। जवाब ना भी देवे कहेगा बापू आप तो जाता नहीं मैनू कहिंदा नहीं पहुंच सकेगा। आप बंदा करे आप शुभ रस्ते ते आप शुभ मार्ग ते कदम धरे ते बच्चियां नूं छोटी तो छोटी उम्र च इस पासे प्रेर के ला ते जिहड़ा बंदा व्यौंता करदा रह जावे कर लैने अगले साल करांगे उदो अगले साल करांगे इन्ने सालां दे हो जाइए फिर करांगे कोई नहीं कर सकदा। ओ पुराने ऋषियां ने कुछ व्यौंता कीतियां सन उन्होंने चार आश्रम बना दिते चार हिस्से जीवन दे कर दिते। वो कहंदे ने ब्रह्मचर्य 25 साल ब्रह्मचारी रहो फिर गृहस्थ आश्रम 25 साल तो 50 साल तक तुसी गृहस्थ विच खचत रहो बच्चे हो जान उन्हां नूं सुना के पढ़ा के लिखा के सवार के कमां कारां ते ला दे 50 साल दी उम्र च फिर तुसी सन्यास ले लो। 25 साल सन्यास त्याग करके ध्यान लाउणा सिखो भगती करनी सिखो 75 साल दे हो जाओ 75 साल तो बाद फिर जो कुछ सिखिया बाणप्रस्थ आश्रम विच लोकां नूं सिखाउंदे फिर। गुरु नानक साहब ने देखिया ए तमा कमाल दी गल है कि बंदा ऐसा प्रोग्राम बना के बैठा है कि 75 साल दे 100 साल दा होवेगा। जे 10 साल दी उम्र च फतेह के जा गया फिर की होवेगा सारी व्यौंत धरी रह जाएगी। ए तो जिथों जाके उथों सवेर फौरन जल्दी तो जल्दी। कबीर जी कहंदे ने जद तेरियां दो लत्तां सन उदों तैनूं सोचण दी लोड़ सी कि छेती तो छेती भगती वल लग जावां हुण तू की करेगा। चार पांव दोए सिंह उदों सिर ते सिंह नहीं सी उदों सिर दे उत्ते सुरती दा पहरा सी ते सिंह पशुपणे दी निशानी। हालांकि कई मूर्ख जानवरां दे सिंह नहीं भी हुंदे लेकिन आम तौर ते सिंह उहदे सिर ते दिखाए जांदे ने। आ तुसीं देखदे हो ना कौडे राक्ष दी आपां कई बनाई हुई चित्र वेखदे आ फोटो वेखदे आ मांस खाणा बंदा मनुखां दा मांस खाण वाला बंदा उहदे सिर ते सिंह विखा दित्ते। इस करके विखा दिते कि मनुख नहीं है मनुख तो थले दी चीज है पशु पुणे वाली गल है राक्षस प्रति वाली गल है। राक्षसां दे सिर ते सिंह विखाए जांदे ने मनुख दे सिर दे उत्ते सिंह नहीं विखाए जांदे। हां जदों मनुख बहुत उच्चा उठ जांदा है ना फिर उहदे चेहरे दे दुआले एक नूर दिखाया जांदा
फोटो बनाउन वाले एक प्रकाश विखाउंदे ने। ए देवता हो गया, मनुख तो उच्चा उठ गया। मनुख तो थले आवेगा ते सिर ते सिंग विखाउने पैणगे। मनुख तो उच्चा उठेगा ते चेहरे ते नूर विखाउना पैगा। ए बिल्कुल मनुख दी अपनी मर्जी है कि थले नूं आउंदा है कि उपर नूं जांदा है। देवी गुणा वल वधदा है कि पशु गुणे वल वधदा है। कबीर जी कहिंदे चार पाम दोए सिंग गोंग मुख होण तों बोल कुछ नहीं सकदा, गल नहीं कर सकदा, मेरी गल दा उत्तर नहीं दे सकदा। तब कैसे गुण गई है, हुण तू करेगा भगती, उदो नहीं कीती हुण कर सकेगा। तब कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेगा पर है। उठदियां बहिंदियां तैनू सोटा मार देन, जिदे खेत दे कोलों भी लंघना है ओ डांग नाल तैनू भजा देंदे। काम ना करन ते तैनू सजा मिली, हुण तैनू खाण ते किसे पासे मुंह मारन ते भी पैर पैर ते सजा मिलदी है। हर बिन बैल वीराने होई है, वीराने दे बैल जिदा कोई साई खसम ना हो। वीराने विच भटकण वाला बैल फाटे नाकन, तेरी नक दे विच जिहड़ा ओ नथ पा के तैनू तोड़दे रहे ने, उस नथ ने तेरा सारा नक पाड़ छड्डिया। फटिया होया तेरा नक जिदे च हुण नथ भी शायद ना पै सके। टूटे कंधन मार मार के तेरे कंधे उन्हां तोड़ छड्डे, तेरे कन्ने उन्होंने कुट कुट के तोड़ छड़े ने, जख्मी हो चुके ने। फाटे नाकन टूटे कांधन कोदो को पुस खई है। हुण तां तू किसे खेत नूं मुंह मारन नहीं देना, उन्होंने किते कोई भों तूड़ी कोई सुक्का चारा कोई घा तिनका किधरे पिया होया है, ए पुस खा के गुजारा तेनू करना पै रहा। सारो दिन सडोलत बन मैया, सारा दिन तू बन विच भटकदा रहना है। अज हुण पेट अगही है, अजे भी तेरा पेट भी भरिया, भुख तेरी कायम है क्योंकि तेनू कुछ अज दा खाण नूं देंदा नहीं। जिन्ना चिर तेरे शरीर विच काम करन दा दम सी उन्ना चिर तेनू अपनी लोड़ नूं कुछ ना कुछ उपालदे रहे। हुण क्योंकि तेरे शरीर दे अंदर सत्ता नहीं, हुण तेनू कोई खाण नहीं देंदा। कुदरत दे इन्हां खुले खेतां विचों, कुदरत दीआं खुलियां चरवाहां, इन्हां चरागाहां विचों भी तिनका तेरे भागां विच नहीं है। तो कहिंदे ने सारो दिन सडोलत बन मैया, अजो ना पेट आ गई है। तो कहिंदे ने जन भगतन को कियो ना मा कहो ना मानो, भगतां ने तेनू किया भगती कर लै, उस जीवन विच तू भगतां दा किया नहीं मन्निया, कियो अपनो पई है, हुण तू अपना कीता पा। वाकई मनुख अपना कीता ओ तां है ना बैल दी जूनी च पा रहे, लेकिन आम तौर ते मनुख ऐसे जीवन विच अपना कीता पा रहे। जिन्ने संसार ते दुखी ते हाय हाय करदे परेशान लोक ने, पापी कर्म कमाम दे करते हाए हाए, एथे जीवन विच भी ते अगे भी, नानक ज्यों मथन माधानिया त्यों मथे धर्म राय, अगे जाके भी लेखा देना औखा हो जाता। जीवन विच भी महाराज कहिंदे ने

मैं सारे संसार में जाके वरतावा और संसार दे लोग तेरा नाम जप के तेरे विच अभेदता प्राप्त करन। उस वेले गुरु नानक नू करता पुरख वाहिगुरु ने एक खजाना बख्शिश किया, ऐसा अमूल खजाना ज्यो ज्यो इस नू खाओ खर्चो ये वधदा जांदा है। गुरबाणी का खजाना, नाम का खजाना, और फिर इस खजाने दे विच कदे टोट

0: You're listening to SeekNet Radio.
1: Sardar, pehla ta ek pinda sha lutya, fir aunda nahi ghor shau karta fir.
2: Shabash. Sherya, e maal sare jande.
1: Chokum sardar. Aye, jabra. Aa tha. Aye jabra.
3: मेरी बॉडी ना देख रही पागल हो जाएगी।
4: मेरी सिंगिंग से कार्य भेजी की होते धीरे वालों।

छुट्टी हो सकती है पर सोलह छुट्टी हो सकती है। सोलह सुच्चा है, हर सुच्चा है।

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नूं कट के नकारा करके सुट दिंदी। मनुख मनुख ना रह के पशु हो जांदा। औगणे आरा मनुख पशु है। गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा है। औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जांदा, अपनी हस्ती तो नीवा हो जांदा। अवगुण मनुख दे गुणा नूं कटदे ने, दी हस्ती नूं कटदे ने, ते सतगुरु अवगुणा नूं कटदे ने। सतगुरु दे नजदीक होइए, सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे ने। अवगुण कटे जांदे ने गुण निसरदे। जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा, जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी, जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ, ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है। ऐसा जीवन बख्शिया है जिहड़ा मौत तो उपर है। और आप देखते हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी, मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी। लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी। पहला मरण कबूल जीवन की छड आस। औगण मर जांदे, नकारा मनुख मर जांदा। एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा, गुणा दा जन्म हुंदा, दैवी गुणा नूं लै के मनुख उपर नूं उठदा, गुरु नूं प्यारा लगदा, गुरु नूं पाउंदा है, संसार नूं चंगा लगदा। और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश की है सानू, जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी, तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए, सरदार हो गए, मान वाले हो गए। रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो, और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है, तेरी दरगाह विच भी मिलता है। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले है चूके सब सोग संतापे। जिंदगी विचों संताप निकल गए, चैन आ गया, सुख आ गया जीवन में। कायर होंदे सां बहादुर बना दिता, नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता, आलसी होंदे सां उद्यमी बना दिता, बुरा चितवदे सां सेवादार बना दिता, परोपकारी बना दिता। और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्हें योग कीता है, अमृत दियां दातां दे के, नाम दियां दातां दे के, बाणी दी सौगात बख्श के, जीवन दा सुचज बख्शी है। साहब कहिंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया, तिस गुर को हो सदा घुमाया, मैं वारने जावा सतगुरु तो, तिस गुर को हो खनिए, मैं टोटे टोटे हो जावा बलिहारने जावा उस तो। जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया, जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया, तिस गुर को हो वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया, होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने, तिस सतगुर को वड पुन है, उहदा कोट आन कोट धनवाद, उहने बड़ा पुन कीता मेरे ते। जिन अवगुण कट गुणी समझाया, सदा उस सतगुरु नूं चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है, उहदा परउपकार साडे सिर ते, उहदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है। जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु बहु सांडे। साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के, अपने प्यार दी निशानी ला के, अपना बना के अपना रूप दिता है, अपना सुचज बख्शी है, अपना प्यार बख्शी है,
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।

मन विच वस जावे बड़िया बरकतां। वाहिगुरू दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वड़ियां, बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपण दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितरे नहीं मिलदा। साडे सारिआं दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। जो कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जो कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लेना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जो हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता है, उदो रोमा विचों अमृत चढ़ता है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों स्वासा विचों नाम उचरिया भी जांदा है, ते नाम सुनदा भी अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों। नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने, इसे शब्द आपां पढ़ रहे हां ना। साहिबां च कहिंदे ने नाम जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल दी गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तां हो गया, सदा ही कीर्तन हुंदा रहे, इह किवें हो सकदा? ओह इक अवस्था है। कोई उहनूं अनहद नाद दी गल करदा, कोई उसनूं इलाही नाद दी गल कह के करदा, कोई किसे ढंग नाल दसदा, लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरु हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंद दी अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजदा है। हर वक्त दी आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर इउं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। ते ना ना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वारी इह वी बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा ते वगार जापदा, बोझ जापदा। ते शुरू शुरू विच सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं एक बेनती करा, बच्चे नूं स्कूल तोरने आ पहला आड़ी भी करदा। कोई विरले बच्चे होंदे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरिआं बच्चिआं वल वेख के इहनां दा लिबास बड़ा वधिया है, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने। कईआं बच्चिआं दे अंदर इह शौक पैदा करता जांदा है, बणेगा बहुत वड्डा अफसर, बणेगा बड़ीआं तरक्कीआं करेगा, उह चा लै के तुरदा। नहीं तां आम तौर ते बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लग्गिआ बहुते तां रोंदे वी वेखेगा, ओनू एक बारी धक्के नाल स्कूल पहुंचाना पैंदा, उत्थे जाके बहिंदा, एक तां जकड़ के बहना बड़ा होंदा, एक जो कुछ पढ़ाउंदे नहीं उहदी समझ तों बाहर आउंदा, उह पहला पहला बड़े परेशान होंदा, पहला पहला उसनूं कूड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अक्षर हन उह बोझ जापदे। लेकिन चार दिनां बाद उह जिहड़ा बोझ है उह ज्ञान दा बोध दा एक सोमा बन जांदा है, फिर उही अक्षर मौज बन जांदे। उहनां अक्षरां बिना नींद नहीं आउंदी, जद तक कुछ पढ़ना लवे उहदी मन की शांति नहीं बनती। यह संसारी पद्धत की गल, धर्म के मार्ग से भी ऐसा है। शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापदा, नितनेम भी बोझ जापदा, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापदी। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जिहड़े कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने ना, कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जिहा अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाए, वासियां मारदे ने, पासे मारदे ने, किहड़े वेले भोग पवे जान छुट्टे, फसे जापदे। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह वह बेनती की है, स्कूल जाण वाले बच्चे कई ऐसे भी होंदे ने, ओह वरिआं बद्दी 15-15-20 वरे बोझ ही ढोंदे रहिंदे, पढ़दे भी किताबां नाल मत्था मारदे भी ने, रोंदे होए दुखी होंदे होए, कई वारी ओह फेल हो जांदे ते तूं तूं के अपने आप नूं शर्मो कशर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं होंदा, शौक नाल नहीं पढ़दे। ते फिर उहनां दे माता पिता उहनां दा आला दुआला कहिंदे पढ़दा तां हैगा, पढ़दा कदा विगार कटदा, तू कसीट के तुरिया आउंदा, वैसे पढ़न वाली गल कोई। बिल्कुल इसे तरह साडी गल,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਲਟਕਾ ਦੇਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦੇਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭਾ ਤੇ, ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਖਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ।

कोई एक काज सवार सकता है, कोई दो, कोई तीन, कोई दस, कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करता है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा जो समर्थ है, जो मेरे